0: त्रिपटक बैंक अफ द ईयर 2024 र 2025 को सम्मान सिटिजन्स बैंक विश्वास को नाम सिटिजन्स बैंक हजुर को प्रगति को सहयात्री।
1: ए रजनी, वही लंबा डंडा है, जल्दी लेके आओ तो।
2: अरे ये मुर्गी का दाना देख समय पर आप कहे डंडा खोजा जाता?
1: एक ठू सांप है मुर्गी के फार्म लगे, उसका डंडा से डरवाए के भगावे के परा, जल्दी लाओ ना।
2: अरे सांप का नहीं चला चाहिए ना, नहीं तो हमरे का डस सकत है, रह दिया जाए, बल्कि घर भीतर आए तो भगाओ खोई।
1: रजनी, फार्म में हल्के मुर्गी मार दे और खाई ले, यही नाते भगावे के चाहत रहे।
2: फार्म में कीड़ा मकोड़ा मूस सांप न हले कहे के तार दारी लगाए हन, सांप मुर्गी के नुकसान नहीं करी, बल्कि आपका न डसी ले, दूर रह जाए।
1: ए सही कहे, क्या करें, सांप देख के बाद डर लग जाते है। अरे सांप तो लौट के बेरवा के ओर चले गवा।
2: हमरे घर नाई सपन से डेरावा जाता है, ओनरियो हमरे से डेरात है, यदि केहू जान अनजान में चलावत के प्रतिरक्षा करे के या अपन बचाव करे के खातिर सांप डसत है।
3: सांप से दूर रहा जाए, सांप का न चलावा जाए या न चिढ़ावा जाए, सांप आदमी से डेरात है, न चलाई के दूर रहे पर सांप न ही डसी, लेकिन उस सब खाना के खोजी में बाहर निकला समय पर घास काटत के खेलत के चलत के छुई गए पर आदमी आक्रमण करत है, सोच के प्रतिरक्षा करे के क्रम में सांप डसत है, आदमी सांप देखते भरे में मारे लागत है, ऐसन करत के सांप डस लेत है।
4: सर्पदंश संबंधी विश्वसनीय जानकारी के खातिर और नजदीक के सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के खातिर आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में देख सका जाता है।
5: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
6: पाल्पा भैरव मेडिकल हल बुटवलको अत्यन्त जरुरी सूचना।
7: विगत 25 वर्षदेखि मुटु तथा छाती र छाला रोगको सफल उपचार सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेकोमा यही असोज 25 गतेदेखि काठमाडौँ B&B हस्पिटलका हाडजोर्ने नस तथा लिगामेन्ट विशेषज्ञ र आमदा अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा समेत बिरामी जाँच गरिने भएकोले उल्लेखित समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ।
6: ब्लड प्रेसर, सुगर, थाइराइड, मुटु रोग, छाती रोग, ग्यास्ट्रिक अल्सर, निमोनिया, चक्कर लाग्ने, लुतो, दाज, पुतले, दुबे, चाया, डन्डीफोर, पुरानो घाउ खटिरा, यौन दुर्बलता, सेतो पानी बग्ने, यौनाङ्गका घाउ खटिरा, कपालको रौँ झरिरहने, हाडजोर्नीका समस्याहरू, प्यारालाइसिस, जोर्नीहरू दुख्ने, नचल्ने, नसा च्यापिएको, ढाड कम्मर दुख्ने, मेरुदण्ड र घुँडाको समस्या, लिगामेन्ट च्यातिएको, भाँचिएको, हाडजोर्नीका विशेष अपरेशन र बालरोगसँग सम्बन्धित सबै समस्याहरूको विशेषज्ञ चिकित्सकहरूद्वारा जाँच तथा उपचार गरिन्छ।
7: सम्पर्क पाल्पा भैरव मेडिकल हल, श्रवण पथ बुटवल, साझा हस्पिटल को अगाडि।
6: सम्पर्क नम्बर 071534905, 071553905 र मोबाइल 98570078010।
8: अब सुन्नुहोस् श्री स्टिल्स रेडियो कथा भाग एक। हाम्रो शर्माजीले आफ्नो सपनाको घरलाई श्री FE550D एकदम बलियो गरेर बनाउनु भएछ। नयाँ घरमा सरेदेखि नै उहाँको परिवारले हाँस्दै खेल्दै आफ्नो जीवन जिउन थालेछन्। सब एकदम खुसी हुन्छन्। तर त्यसको केही दिनमै एकदम ठूलो भूकम्प आउँछ। रेडियो सुन्दै गर्नुहोस्। अब बाँकी कथा अर्को भागमा। श्री FE550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टिल।
9: यो युनाइटेड हस्पिटल यही होइन र भएको कहाँनिर सरेछ र बिरामी भएर बस्न खाना छैन हस्पिटल भेटिने होइन
10: ए दिदीले युनाइटेड हस्पिटल खोज्दै आउनु भएको यो त सरेर आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवनमा गएको छ नि ल चार नम्बर चोकबाट अटो चढ्नुहोस् त्यसपछि तौलियावा रोड हुँदै 2 किलोमिटर अगाडि जानुहोस् त्यहाँनिर ठुलो बोर्डमा युनाइटेड हस्पिटल लेखिएको छ त्यहाँ जानुभयो भने तपाईँको समस्याको समाधान भइहाल्छ नि अनि दिदी युनाइटेड पहिलाको जस्तो छैन नि अहिले त धेरै सुविधा सम्पन्न भएको छ तपाईँलाई जे समस्या भयो त्यसको विशेषज्ञ डाक्टरबाट उपचार हुने भएकाले कुनै चिन्तै लिन पर्दैन
11: हजुर विशेषज्ञ डाक्टरहरूबाट चेक जाँच हुने जिल्लाकै सुविधा सम्पन्न एकमात्र अस्पताल युनाइटेड हस्पिटल बारगुङका चार ठाकुरापुर र झुङ्गाको बीचमा यहाँ विशेषज्ञ डाक्टर सहित दैनिक ओपिडी सेवा पेट छाती मुटु तथा सुगर रोग विशेषज्ञ सेवा हाड जोड्ने सम्बन्धी हड्डी भाँचिएको रडहरू राख्ने निकाल्ने महिला तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ सेवा मेजर अपरेसनहरू एपेन्डिसाइटिस पाचेघर फाल्ने हर्निया पित्त थैलीको ढुङ्गा निकाल्ने चिरेर बच्चा निकाल्ने लगायतका साना ठुला अपरेसन
10: 24 घण्टा सेवा उपलब्ध छ
11: नभुल्नुहोला
12: विस्तृत जानकारीका लागि युनाइटेड अस्पताल बाढगंगा 4 ठाकुरापुर कपिलवस्तु फोन 076550200 मोबाइल 98575551138
13: नमस्कार तपाईँले सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज सुनिरहनु भएको छ यो समय हो आधुनिक गीत संगीतको तपाईँ अबको क्रममा नेपाली बजारमा भित्रिएका नयाँ तथा पुराना आधुनिक गीत संगीतहरू सुन्न सक्नुहुन्छ।

0: अब जाए के घर के देवाल लिपोती के उराय लाग।
1: मुस्कान बिटिया, ए मुस्कान बिटिया, घर के देवाल लिपोत के नाई खत्म भवा, खेत में काम करे वाले का नहारी लेके जाए के रहा।
0: उराय लाग अम्मा।
1: ए अच्छा, हम नहारी बनाए के धई दे थे, अब भी लेके चली जाओ।
0: हो थे अम्मा। ओहो, यही देवालिया में बिल है, माटी से बंद कर दे पड़ा की काओ। हाँ, अब बंद कर दे थे।
2: अरे बापा रे अम्मा, हमें सांप डस लीस।
1: अरे बाप रे बाप, कहाँ डस लीस बिटिया?
2: यही दही रे हाथ में डस लीस अम्मा।
1: अरे अरे, क्यों क्यों? अरे है क्यों? हमरे मुस्कान बिटिया का सांप डस लीस। अरे क्यों है, क्यों है?
3: अरे का हुई गवा, का हुई गवा काकी?
1: राकेश बाबू देखो ना, मुस्कान का सांप डस लीस की काओ।
3: ना घबरा बजाय काकी, मुस्कान ना घबराओ, शांत हुई के बैठी रहो काकी, बल्कि मुस्कान का सीधा सुता बजाए और ना हिला बजाए।
1: वो थे बाबू, मुस्कान मुस्कान बेटा सीधा हुई की सुतो।
0: वो तो है
3: काकी, आप मुस्कान के पहिरा कपड़ा और गर गहना ढीला कर दिया जाए, न कस जाए के मेर से, और हाथ के चूड़िया खोल दिया जाए, दस लिया ओकर हाथ न चलाव जाए।
1: हो थे बाबू, और साफ दस लिया जगह के आसपास काट के इंजेक्शन से तान के या मुंह से चूस के विष निकाले के होए की?
3: नहीं काकी नहीं, साफ दस लिया घाव के आसपास काटे जारे चूसे के काम नहीं करे चाहिए, और कुछ नहीं खियावे चाहिए, पनियों नहीं, बुझा गए ना?
1: तब तो गर्म मोरा लाई के कपुआ डसी लिए जगह पर लगाई दे तो बाबू।
3: वो नहीं काकी, घरेलू उपचार जैसे कि जहर मोहरा, जंगली घास पात और जड़ी बूटी के प्रयोग नहीं करे चाहिए, बुझा गए ना?
1: बुझेन बाबू बुझेन।
3: काकी बल्कि रमेश का मोटरसाइकिल लेके आवे कहा जाए ना, जल्दी से जल्दी साधन खोज के एंटी वेनम दई जाए वाले स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाए, मिला तो मुस्कान का जल्दी ठीक हो जाये। कहा जाए तब तक हमरिंग के गांव से कौन एंटी वेनम केंद्र नजदीक पड़त है, हम snakebitenepal.org के वेबसाइट में खोजित है। हाँ डाटा हम कैसे देखे करा? हाँ देव, snakebitenepal.org वेबसाइट खुली गवा, हमरिंग के गाँव से तो गुरु सिंह सर्पदंश उपचार केंद्र में सर्पदंश के उपचार कई जात है, मुस्कान का वहीं ले जाके पड़ा।
1: राकेश बाबू, राकेश बाबू मोटरसाइकिल लेके रमेश आई गए।
3: काकी हम मुस्कान का न हिलाए के मोटरसाइकिल के सीट के बीच में बैठाए के अपने पीछे से पकड़ के बैठा जाए, जल्दी से जल्दी सर्पदंश उपचार केंद्र में पहुँचाई मिला तो मुस्कान का बताए सका जाता है।
1: जी हो थे बाबू, चलो।
4: याद रखा जाए, सांप डस लिए के बाद मोटरसाइकिल स्वयं से भी बुलावा जाए, सर्पदंश उपचार केंद्र ले जाए के जान बचावा जाए, या कोनो सवारी साधन उपलब्ध न रहा अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी के फोन पता लगाए के फोन से सुझाव लिया जाए।
5: वही मेर से मरीजों का सांप से सावधान रह के चाहिए, मरीगवा सांप का झटपट छुए और चलावे के नहीं चाहिए, कबो काल सांप मरीगवा है सोचा जात है, लेकिन वो डस सकत है, संभव हो तक डसे वाला सांप के फोटो खींच के डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी का दिखाए पर वो लोग का सांप विषालु है कि नहीं पहचान करके सही उपचार करे में सहयोग करत है।
4: सही समय पर उपचार किए पर सांप डस लिए व्यक्ति का बचाई सका जात है, और ऐसे हो सके वाला मृत्यु दर कम कर सका जात है। सांप डस लिया व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में ले जावा जाए, ऐसे वह व्यक्ति के जीवन बचावे के मदद करत है। विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नक्चरवे के उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के खातिर आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाए के आवश्यक जानकारी ले सका जात है।
6: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
7: युनाइ युनाइटेड अस्पताल बाढगंगा चार ठाकुरापुर कपिल वस्तुमा बिरामीहरूका लागि थप नयाँ सुविधाहरू।
8: कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर गोविन्द रावत, छाती तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या, मुटु रोग, मृगौला रोग, पेट र आन्द्राको समस्या, कलेजो, थाइराइड र मधुमेह सहितका रोगहरूको पूर्ण परामर्श र उपचार।
7: हाड जोड्नी नसा तथा बाथ रोग विशेषज्ञ डाक्टर समीर खानद्वारा हाड जोड्नी सम्बन्धी समस्या, हड्डी भाँचिएको, रडहरू राख्ने निकाल्ने, नसा च्यापिएको लगायत बाथ रोग विशेषज्ञ सेवा बिहान 10 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन परामर्श तथा उपचार सेवा उपलब्ध छ। वरिष्ठ फ्यामिली फिजिसियन तथा जीपी सर्जन डाक्टर पूर्ण बहादुर घरतीद्वारा विशेषज्ञ सेवा सहित मेजर तथा माइनर अपरेशनहरू, पाठेघर फाल्ने, चिरेर बच्चा निकाल्ने, नर्मल डेलिभरी सेवा, एपेन्डिसाइटिस, हाइड्रोसिल हर्निया, पित्तथैलीको ढुङ्गा निकाल्ने लगायतको साना तथा ठूला अपरेशनहरू वरिष्ठ एनोस्थेसियोलोजिस्ट डाक्टर सुमन श्रेष्ठद्वारा क्रिटिकल केयर परामर्श तथा उपचार सेवा, अन्य ओपीडी सेवा बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म डाक्टर योगेन्द्र थापाद्वारा 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा।
8: युनाइटेड अस्पताल बाढगंगा 4 ठाकुरापुर कपिलवस्तु, सम्पर्क 076-550-200, मोबाइल नम्बर 98-570-55-138।
7: अब ढुक्क हुनुहोस्, विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस् युनाइटेड अस्पतालमै।

0: सुन्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 MHz। यो समय हो विश्रामको।
1: अरे बाप रे बाप, मरी गान मरी गान।
2: ए साथी लोग, तोरी लोग एक छिन फुटबॉल बंद करो तो वो देखो विवेक के का होएगा। वार झाड़ी को वो ना जाओ कहे रहे,
3: वो देखाओ सब भाग गया। उहर विवेक का काट नहीं इसकी का हो। उफ, स्कूल के फुटबॉल देखे आए रहे और केस दुर्दशा आए पर।
1: अरे हमें तो सांप काट ली, अब मर जावा।
2: विवेक ढेर ना घबराओ साथी। अच्छा शांत हो के ढेर हिल डुल ना कह के बैठो, तुमको हमारे स्वास्थ्य केंद्र पहुँचावा जाये। ए पारस, वहाँ घर के भैया का मोटरसाइकिल लेके आओ कहो तो।
3: हाँ विवेक का ही खुला जगह पर सुताओ, ढेर हिलावे डोलावे न कह के। हम यही काफी से हौकित हैं, गठिया के कुछ निचवा काटे है, फूलत है, काटी लिया जगह का छुए और चलावे ना ही चाहिए।
2: अब हम विवेक का सहज हुए कह के ओकर कसा पेटी बटन सब खोल दी है और घड़ी और अंगूठियों निकाल दी
3: है। बहुत है रोशन, हम इधर विवेक के जूता और मोजा धीरे धीरे निकाल देते हैं।
4: ढेर जैसन सांप के जसाई खतरनाक नहीं होते है, समय पर उपचार कई मिले पर विषालु सांप काट लिए व्यक्ति का बचाई सका जाता है। सांप काट लिए व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में पहुंचाई दिए से उनके बढ़वार क्षति हुए से बचाई सका जाता है।
2: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करें और नक्चेरे के उपचार केंद्र कहाँ है कह के पता लगाए आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाके आवश्यक जानकारी ले सका जाता है।
5: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
6: ए रुक रुक रुक,
7: के भयो, किन कराएको यस्तो?
6: दाई
7: यस्तो पनि हुन्छ र?
6: 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे।
8: डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड। यति मात्र होइन, लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
7: हो र? हो नि, एनसेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड।
9: आजै यो सुपर भ्यालु प्याक *123# डायल गरी वा एनसेल एप मगाइ लिनुहोस्। एनसेल नेपालकै लागि।
10: वन हाम्रो जीवन हो, तर प्रत्येक वर्ष डढेलोका कारण हजारौं रुख वन्य जन्तु र वनस्पति नष्ट हुन्छन्। बढ्दै गएको वन डढेलो र आगलाईको प्रमुख कारण भनेकै मानवीय लापरवाही हो। जंगलमा आगो नबालौं, कतै डढेलो देख्दा तुरन्तै स्थानीय निकाय, वन कार्यालय वा सुरक्षा निकायलाई खबर गरौं। वन बचाऊ, जीवन जोगाऊ, लुथरन वर्ल्ड रिलिफ, नेचर मीडिया नेटवर्क एवं साझेदार संस्थाहरूको सहयोगमा पुनरुत्थान परियोजनाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
11: सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटलद्वारा गरिब विपन्न तथा न्यून आय भएका बिरामीहरूको लागि सस्तो सुलभ स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। सस्तो सुलभ कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध सेवाहरू सस्तो सुलभ ओपिडी, सस्तो सुलभ वार्ड, सस्तो सुलभ आईसीयू तथा एनआईसीयू सेवा, सिटी स्क्यान, ल्याब, यूएससी, एक्सरे, इन्डोस्कोपी सेवा, सस्तो अपरेशन प्याकेज। सस्तो सुलभ कार्यक्रमका विशेषताहरू, न्यून शुल्कमा उल्लेखित सम्पूर्ण सेवाहरू प्रदान गरिने, बिरामीको संख्या अनुसार नर्सिङ स्टाफको व्यवस्था, आधुनिक प्रविधि सहित गुणस्तरीय सेवा प्रदान, अनुभवी डाक्टरद्वारा परामर्श, स्वच्छ सफा परिवार मैत्री वातावरणमा छिटो छरितो सेवा। सम्पर्क सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटल, मायादेवी 8 भैरहवा रूपन्देही, मोबाइल 97464-0249। पुनश्च सस्तो सुलभ स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि बिहान 7:30 देखि 9:30 सम्म टिकट लिइसक्नु पर्नेछ।
12: सुन्नु न,
13: भन न भन।
12: चाडबाडहरू पनि नजिकै छ, बिहा पार्टीमा जाँदा पनि राम्रा गरगना छैनन्, बनाउन पर्ने।
13: बनाउला नि त, फेरि सुन चाँदी जस्ता कुरा, विश्वासिलो पसल पनि हेर्नु पर्यो नि।
12: त्यसको लागि हजुरले चिन्ता गर्नु पर्दैन नि हजुर, हाम्रै सुन्दर नगरी 4 नम्बरमा शिला शिल्प स्याङ्जा कारीकोटे सुन चाँदी पसल खुलेको छ नि।
13: त्यसो भए त जाम न त, हामीसँग भएको पुरानो सुन पनि छ, त्यो सुन पनि लगेर जाउँ है। त्यही सुनसँग केही थपथाप गरी नयाँ सुन चाँदीका गर गहनाहरू बनाएर ल्याउला। बरु त्यो सुन चाँदी पसल कहाँनिर छ कुन्नी?
14: तौलिहवा रोड पश्चिम पट्टि एनसेल टावर भएको ठाउँमा।
13: हजुर, ग्राहकहरूको चाहनालाई मध्यनजर गर्दै अर्डर अनुसार रेडीमेड गर गहनाहरू पनि तयार गरिनुको साथै पुराना गहनासँग नयाँ गहना पनि सट्टीपट्टी गरिन्छ। दक्षिण कालीगढबाट तपाईँले खोजे जस्ता आकर्षक डिजाइनका गर गहनाहरूको लागि एकपटक अवश्य हामीलाई सम्झिनुहोस्। शिला शिल्प स्याङ्जा कारीकोटी सुनचाँदी पसल तौली हवा रोड पश्चिमपट्टि एनसेल टावर भएकै घरमा प्रुफ राइटर ओम गहतराज, शुभचिन्तक लोक बहादुर नायरी। मोबाइल 98215 90 00 95, 98575 56 095 र 98174 52 311।
0: सुन्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 मेगाहर्ज।

0: दादू एक कप चाय के 30 रुपया कतरा महंगा। आजकल तो कुछ चीज में फिर पैसा वसूल नहीं हुई ना।
1: उठ जे भाई, अब एनसेल में पैसा वसूल
0: हो का?
1: हो जे, एनसेल में आप खाली 18 रुपया में एक डिनर क्लब।
2: शांति र विकास को आधार सुन्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 मेगाहर्ट्ज।

0: लागि
1: Classic Tech को Wi-Fi 6 router नाम एक घाम अनेक शक्तिशाली 4 एंटीना में वाइड कवरेज 5G स्ट्रेंथ लो लेटेंसी और फास्ट स्पीड सबे अस्त्र को शक्ति बोके को 200 Mbps को इंटरनेट Classic Tech को Wi-Fi 6 router नाम एक घाम अनेक शक्तिशाली 4 एंटीना में वाइड कवरेज 5G स्ट्रेंथ लो लेटेंसी और फास्ट स्पीड सबे अस्त्र को शक्ति बोके को 200 Mbps को इंटरनेट अब 3 महीना का लागि मात्र 3300 रुपया में साथ में आईपीटीवी मात्र 250
2: एकदम बड़ी गर्मी हुँदाखेरि चाहिँ यो गर्मीले गरेर शरीरमा पानी को कम हुने